जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा, कूड़ बोले किसे ना पावे। वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की, जैसा कोई करे तैसा कोई पावे। एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे, अगों दे जन नानक आख सुनावे। पौड़ी गुर सच्चे बताते हो, रखवाले गुर दिते पूर्ण होई आस। गुर चरनी मन रते, गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते। गुरे अपनी किरपा धार, अपने कर लिते नानक सद बलिहार। जिस गुर के गुण इते, सलोक महला पहला। तां की रजाए लेख्या पाए, अब क्या की जय पांडे। हुक्म हुआ हासल तदे होए लिपड़िया, हंड है जी कमांदे। महला दूजा नक नथ खसम हाथ, किरत धके दे जहां दाने तहां खाने। नानका सच हे पौड़ी, सबे गल्लां आप हाट बहालियो न। आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न, आपे जंत उपाए आप प्रित पाल्यो न। दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न। नानक भगता सदा आनंद, भाओ दूजा जाल्यो। सलोक महला तीजा, ए मन हर जी त्याए तू। एक मन एक चित पाई, हर किया सदा सदा वड्याईया। दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने। जित सेवे सुख पाए, नानक गुरमुख मिल रह। हम मैं शब्द जलाए, महला तीजा। आपे सेवा लाए, आपे बख्श करे।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरत है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तब हुए भस्म तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बडाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहाओ ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लो बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मरखट लो सब लोग कटंब भयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नरनी भ्रम सुआ वेद प्राण सपै मत।

ना जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर मई।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया।

है कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाउ लौकी अठसठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया।

अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह जी।

हो, ऐसो बेटी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन ना जाई हो।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नरपत एक संघासन सोया सुपने पया पेखारी अच्छत राज बिसरत दुख पाया सो गत पई हमारी राज पोय अंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वै सोई कह रविदास हाथ पै नीरे सहजे हुए सो होई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पय हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोर।

नदर करे तुद बाज प्यारे केवर सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिसे आ

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन।

तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखोट नान फुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा ते हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया।

पूरे गुर की साखी बाणी, सुख माने अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

निर्मल होए, अंतर नाम वसे पात उत्तम होए, रहाओ गुरमुख उपरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

मूल को सत तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

क्या पावा, तनात्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचय है मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनियावे जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत सा।

लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लए मलाए भिख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

उड़तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी। तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो। तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई। गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी। हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत।

मालिक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारे गात में तो कह ना सक है प्रभु, हम क्यों कर मिल है अपागी। हर प्रभु स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप लह जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी, तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपेहो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है संत मारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे हैं सुने हैं तेरा जस स्वामी हम किन कह सद बलिहारे जाओ रहाओ सरनागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे है सब गावे है हर हर उत्तम बानी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

दुख मरारी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन द्वारी, तनासरी मोहल्ला पंजवा, दिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो,

मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रहा। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर।

मन गायो। भयो परगास सदा सुख मन मह, सतगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद भीतर वस्या, ता दुख भरम भउ भागा। भई प्राप्त वस्त

कै हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक नदाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना।

आनंद राज पाई, मुक्ति निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अगाई, तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण, पवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय, बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ, नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मोह ओह डीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कै लागे मीठी, माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ, हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया, गूजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया, संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाते, तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो, हम बारक तुमरे तारे।

अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव हो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

पीकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

जी उदारन सब कुल तार हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्र तह हर जस गावह नाथ कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करहे करावह स्वामी, सा मसलत प्रवान रहाव। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण सरन नानक दास हर, हर संती ए बिद जाति। तनासरी महला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंठ लाए गुर राखी।

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महला पंजवां मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हर मंग।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

निरतन कौ तन अंदले कौ टिक, मात दूध जैसे बाले। सागर मैं बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोबिंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव नित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई। संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाय तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, तां का युग मह धर्मा।

पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवां नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परो रवाल रास।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। नासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात सत।

प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी। एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त। साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का। पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती। रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकाथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सरभत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे

नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहो निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रे भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी

दास महसोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईय जाइय रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह

ना बहु भीख है कड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आद जगाद सहज मन धीर पल पंकज महकोट उधारी कर

नानक सहज पाए गुण गाय। तलासरी महला पंजवां घर छेवां अष्टपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो। मानस जन्म संजोग पाया, ताकि है ओट साध। राखो दे कर हाथ, कर कृपा मिलो हर राया। अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो चरण। गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई, रहाओ अनक अपाव करो। माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहावै।

लावे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेख जिस भेती है सफल मूरत करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों पेख मन हठ जो कमावे तिल ना लेख पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे।

आप पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला।

लेखै आपे सुरत बुझाय नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह वाद वदंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोलै अमृत बाण रस

था घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याइए जियो सतगुरु मिले सुपहाय सहज गुण गाइए जियो गुण गाए विगसे सदा आनंदिन जा आप साचे भावे अहंकार हों मैं तजै माया सहज नाम समावे।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन त्रिपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बडभाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया।

अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोया दूजे भाई दुख होए मन मुख जम जोहया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लेहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

लगातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोह निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलय जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोलय जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाऊ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल एहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

छे तप कर बहुर ऐबू या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाऊ सोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इन्ते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अडकाई रहाऊ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई। इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गनका पतत कर्म कीने तेहू पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई। राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही। गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण धर मूंड बलाई। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई। बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी किन मैं पई पराई। दुर्बासा से

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आमन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइय, कहत नाम देव बाहर क्या परमोह, एह संजम हर पाइय, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो क्रंक निस नाद बालहा।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुरनर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हो बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पासा।

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मुफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठी टसरी अमृत ससी टेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठी टसरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तुखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका काखा। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानो लाखा। मेरा मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी। माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके।

तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुपत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही हर मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है।

साकत बंद भय है माया, भिख संचह लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साकह, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिले प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तने अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करहु गुर मेलहु हो।

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जप हो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल

तोल अत भारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई पूरब जन्म के

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै, सुहागन सांत बजहियो, सर्व निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अलपहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महला पंजवा, धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरों पेख प्रभ को नीरों, बेशमार बेअंत बड़ दाता, मने गहीरों पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरों जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महला पंजवा, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भव निद पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवा जा कहो भय गोविंद सहाई सूख सहज आनंद।

है जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधे

या रस मह मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवां तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चातरक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

जम को त्रास भयो उरे अंतर, सरन गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुगद लोभी फुन, करत पाप अबहारा,

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रयह बे सखिया मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेर आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवा

मन बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणत कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंपत है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छान है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

अथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो कोह तड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाइए नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटंब जतन करनं, माया अनेक उद्मह, हर

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान परमिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

ध्रुव पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड़ तमाशिया चेतना आवस नाम, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महापयान उद्यान नगर कर मानिया।

सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान।

पड़ी परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

पाईऐ वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिने उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन तूरी।

गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल सम्राट गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुर देव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया

गुरु प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सके मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर ना भवजन फेरा रहाउ। मेरे हियरै लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ आया,

यह तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना इहु मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को परग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यो पाऊ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवते आयो पांच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो।

अनुग्रहो जाको प्रभ को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करहो परगासा। लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

समान अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जी।

ठाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हुआ खिन भीतर।

सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे।

सरन परे दुख पंजन जाका बड परताप टूडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमुख को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तोसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भय मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

कारण बिसर नहीं निम कही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतरजामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुन गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा।

दूर धंध बंध बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने पूर।

रंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये विस्म।

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाउ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

गुण गावत अच्युत अविनाशी, काम क्रोध बिनसे मद ढीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुरबचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण

कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हम।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई उर्जियो कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाई रहाउ जग झूठे को साच जान कै तां स्यो रुचि उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई पंत नाम देव सो कृत समत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आचै।

आकर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावे भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम।

सर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाउ जो

संसारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुख दाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शगावन हारा जां कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

आदि संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो।

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्बे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर पीछिया पाए, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहु तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

सभी ऊपर पार ब्रह्म दातार तेरी टेक तेरा आधार रहाऊ है तू होनहार अगम अगाध।

दान गोविंद अनूपा, सिमर सिमर सिमर जन सोई, नानक कर्म प्राप्त होई। जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो ना

सगले आपू तेरे जन देख है दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

ए मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

उस्तत है, जो हर प्रभु भावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया, ओए आप छुटे परवार सिउं, सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

आपे हार एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी, तलंग महला नौवां काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चेतना है तू चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यो पानी रहाओ, हर गुण काहे ना गावे, मूर्ख अज्ञाना।

संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारी साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सोई महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सूही महला पहला जोगी होवे जोग वै भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना होवई जे सण निशान जाय तैसो जैसा कांडी है।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नहाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप भला।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगति उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस माण है, बिन नावै पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा सुध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे भाए खुआई।

जे पाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ। गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार। मनमुख हर रस चाखिया ना जाय हौ मैं करै बहुती मिलै सजाय। नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस।

भुखिया सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हलत पलत।

पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया।

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूजै जेहा को करे तेहा को पाईए मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूजै तुद भावै तिवें बला वह रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई इकना सतगुर मेल सुख देवह एक मनमुख धंध पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को होवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

तेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित्र परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग भये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

ज्यो हर पावै त्यों रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

सुध श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै इकना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करह से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ।

मैं मालत हुई कहो नानक मेरी परम गत हुई सूही महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाहीं कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाहीं प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाइयै साच लगै ता हूं मैं जाइयै जिसनो लाए लए सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आणै रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभ सदा त्याई सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु।

आवे, सास भागणी अंक समावे, गर्भ गिहली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रहण बिहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अवनासी रहया भरपूर, जन नानक गावे देख हदूर, सूही महला पंजवा, ग्रहवास गुर की ना हो कर की नार, दास दासी कर दीनी पतार, सगल समगरी मैं कर की जोड़ी, आस पे आसी पिर को लोड़ी, कवन कहां गुणकंत प्यारी, सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी, रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया, कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे, गुण कामन कर कंतरी जाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया, सब ते ऊंचा मंदर मेरा, सब क

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, हुए कृपाल प्रभु मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करे पिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बारी रहाऊ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

शाम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा।

तीरी, जप तप संयम देउ जतीरी, एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी, मान तान हम्बुद हतीरी, सा नानक सुहाग वती।

लपत लपताना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवां घट घट अंतर तुम्हें बसारी सगल समगरी सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन भ्रम भ्रम भ्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर अलाखे अपारी नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवां कमन काज माया वडियाई जा कहो बिन सतबार ना काई इह सुपना सोवत नहीं जानै अचेत व्यवस्था मह लपटानै रहाउ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसर

अमृत कथा सुन कर्ण अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इसनान सुचारी, कहो नानक इहो तत बीच।

की देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बाणी।

का भांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

पंजवां जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उच्चरियै रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जां कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवां गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करहो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत सतगुर की रेन वडभागी पावै नानक गुर कौ सद बल जावै सूही महला पंजवां गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गा

मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतरवाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पीखों हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस नाम बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बलोद मंगल।

मन तूर बछाह जन्म जन्म के किल विखलाह मन तन प्राण जियो अरपाह हर सिमर सिमर मान मोह कटाह दीन दयाल करहु उत्साह नानक दास हर सरन समाह सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाव अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ाई लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित हुए।

आस हर से राते राम रसायण अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवां संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

एको नाम मन मह परवेसा साधु धूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर सरनाई सुही महला पंजवा घर तीजा।

पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुण गाई कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाट पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी पर हर गुण निध पाई।

को सुखी ताके पाछे जाऊं छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाऊं करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया।

करनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा। लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक वर्णौ जो

एक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागै।

इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख फल पाइन, आठ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लै साध है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

अब निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावे प्यारा तैर वेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै, बक्षे बक्षण हार जियो, अन को की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो, नजर प्रभु ते छुटिया।

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाना मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है, मेलह तुझ हर जाए शब्द कमाई है,

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले भिख बीजै भिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मन लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा दुर्म

अलख न लख आ जाई मन मुख मुगद बूजै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर बिचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पा सारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

साथ रखा उर तार, मिलिया हुए न बिछड़ै गुर कै हेत प्यार। फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार। मनमुख मन न भिजई आत्मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर। आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया सिंगार। सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन। हम मैला जग फिरै

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यो केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुरचरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख।

तुझ अराधी दुख पी तुझ त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड है पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदै ता छोड़ ना जाई जे तुद वल रहे ता कोई केहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरे ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहू वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुआ बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यो धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैण दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अगाई नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल।

गुर सलाहिए उठदिया पी गुर अलाव कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ता के धुआं पाव कोई ऐसा सज्जन लोड लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ हों तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी।

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस परापत सोल है, गुर चरणी लागे आए।

आद मध अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन जिथिया मन रहसी है क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यों रंग जियो।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समर्थ तू सर्व मैं तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी

मलाए जियो सोई दस पदेसड़ा मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो एहो मन तै कूडे वसा मैं मार्ग देहो बताए।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

आदि हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जां रावी रंग रात अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायाड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईए फिर उचड़िए माड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जाती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनासी।

झूले ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना कीता क्या सालाही है।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोह, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाई, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पहु भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाई, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा,

तारा साज न्याय उठे करमाही हर गुण गावे है तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज हो हर जन की जो हर हर नाम त्याई।

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सत समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदै वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो

आवे अंतर एको जानिया गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुबा हुई नानक कामन पिर रावे अपना रव रहे आ प्रभ सोई गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मलाए राम हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

गुर का शब्द वसिया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर कृपा घर आई भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल।

जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये।

काया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन कर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दा।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवे सुहागणी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना। जिन गुर चरण

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुरमेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओ माहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन बजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई।

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एक मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ। निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी। हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिया मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

प्रसाद गुर संत जनहु प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम बगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहु चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम सुमाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध बिसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारी हिस्वे जन हूं मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया इन हूं मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मन मुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हूं मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहु मती साडे आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राम।

अध्याय जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुभाई इकत सेज हर प्रभु राम राजया।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भगत।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

ओली वन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर सिउ मन।

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी करोड़ हस्त ते

सिमर साजिया संत भगत गुण गावह राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावह राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी।

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया घर मह नवनिध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे ना विसरै पूर्ण जाके भागा छाया प्रभ शतरपत कीनी सगली तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बुलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महील सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया

ज्ञान की जय। बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै। दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै। राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट।

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आद अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवज

प्राण अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बिचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जीओ ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण जा।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रत्ती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिर उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावे जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

हुआ। नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी। हउमै मार मन निर्मला हर नाम पुरधारी, कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी। जिन किए तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी, जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा, कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए, मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए। कामन फिर मन मानिया तो बनिया शिंगार, किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार। पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे, तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार, सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा, तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए। पौड़ी, पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार। सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार, तन मन रत्ता रंग सियो हो मैं तृष्णा मार। मन तन निर्मल अत सुहना भेटिया कृष्ण मरार, पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला, वाह कसम तू वाह।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख।

ना जपहु कमल मत लागी, मर जाए बेकौ क्या करो अपागी रहाउ। दुख सुख कर कै कटंब जीवाया, मरती बार इकसर दुख पाया। कंठ गहनु तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना सम।

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया।

तह की सार सुहागण जान, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना की।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई रहाऊ। जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुई,

जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारी सो जन मुकत जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाली तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी तब कोई करो दिखा विखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी नदाना ज्यो आप चलाए तिमें कोई चाल है ज्यो हर भावै भगवाना।

हर हर नाम गोबिंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिर है फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांदे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब तूते माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै जो राखै तिवें रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवां बोलो भैया राम नाम पतत पावनु हर संत भगत तारनु हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बसारनु रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनु मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बनासा विच आसा हुए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनु जन नानक तिस पग लावनु राग बलावल महला पंजवां चौपदी घर पहला

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरियै बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावै पार। रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन

जप अलख अभेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रवे आयाप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जिते किते दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण।

पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हाजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की।

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावने आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाऊ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहा पकर सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया।

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साक्त नर थीवे। राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याई। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे अधीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाउ। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाउ। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औध। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवां, मन मैं सिंचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गां।

सरनाई जहां को शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाउ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग आए बसो घर देश मह एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग बिलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊठ सधारे शतरपथ संतन कै ख्याल रहाउ हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल सिमर सिमर नानक तरी हर के रंग लाल बिलावल महला पंजवा सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाउ जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाईया नानक गुर पास राग बिलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई ज्यों कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार रहाउ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मरार बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड़ियाईया बैसंतर पागों ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाउ करो बेनती अत घनी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक किन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिस कौ लगा जिस के वड भागा मैला कदे ना होवई नह लागे दागा प्रभ पाया सुखदाईया मिलिया सुख पाए सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग ये कर्म हमारी।

देवहु सब किस दया धार हम अकिरत कनारे लाग परे तेरे दान सियो नह चित खसमारे तुझ ते बाहर किस नहीं भव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर देहु मुग्ध उदहारे। बुलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है जित सेवै सुख होए कना मन सोई गाइय कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राखो हो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम अधारा जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बलावन महला पंजवा मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अपागे देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह ताई माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई जा कह किया श्रम करे ते बैर बरोधी अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता महमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पये चीता रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लावल महला पंजवा, कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाहि, तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव। सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ। खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन साकूर। जित जित लावो तित तित लग है सियानप सब जाली, जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किस तुम ते मांगना वड भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी देख साध दर्शना। बलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल, संत जना का शोहरा इस चरणी लाग। माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब किस तुम ही ते होवा आप बनत बनाई, दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा, सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो। संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो, कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो, सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया। जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया, एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बलावल महला पंजवा,
माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन में ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आन सियो सोरलिये खे रहाउ सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ सियो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहु रंग किए है होसिए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाउ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमारे करनहार जो कर रहया साई वड्याई गुरपूरै अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नेत हर गुण गाए।

करे कुल कटंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सर्ब थाई कथा परातन यों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराध ते मुख अमृत पीवा। रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पहेरा।

आए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन ना दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई।

आवई गुर सिख प्यारी रहाउ। करन कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना, नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग, ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ, कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न भए बांछत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती, हिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाउ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है, सब भला मनाव है साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल भए हर हर नाम चीन रहाउ। पूर रहे ओ सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाउ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाउ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या हुए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाउ। जलन बुझी शीतल भए राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा का वड प्रताप। बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पए काम पौ नाथा प्रम मिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव। प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम, नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहाउ। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता,
पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बलावल महला पंजवां ताती वाओ ना लगई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई। बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हौ मोको सतगुर मंत्र दरडाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाई जो जो सरल परे ओ गुर।

नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम है मेरे परवार है जो तुम करो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बद

पूर रही दिन अर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रत्न रत्ना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाउ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो,

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जा स्यो राच माच तुम लागे, ओह मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगौरी खावत हे, त्रिण को मंदर साज सुवारियो, पावक तलै जरावत हे, ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत हे, पंच दूत मूंड पर ठाटे, केस गहे फेरावत हे, दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत हे, जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यों फहावत हे, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुरु पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारू मन है अधारू, चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ, सहज समायो गुर है बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रिय मुख लागो जो वड भागो, सुहाग हमारो कतो ना डोली, रूप ना धूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रिय रवि सुहागन, अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद मई, जब ते भेटे साध दयारा, तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ, पूर्ण पूर रहो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, तन ते होए सगल खई, सत संतोख दया धर्म सोच, संतन ते एहो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, किन को सगली सोज पई। बिलावल

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवां अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाउ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवां संत शरण संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाउ सुख सहज अर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरै मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवां मन क्या कहता हौ क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ। अनबोले को तुही पछान है जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कहें जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता। कहो नानक गुर भये।

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे, अंधकूप मह परे ओ प्राणी। परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा। गुर भेटै काढै बाहा परे, बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर कीना, पए आनंदा मिटे अंदेसे। सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ, इयानप ते सब पई सियान।

फल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन छीना बलावल महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ता

जरा मरा कछु दुख न व्यापै, आगै दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइयै एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फासी, साची

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दूए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया परपूरे नानक सरल परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी।

तिसमह प्राणी गलत पया। सरन परे नानक स्वामी की बाहां पकड़ प्रभ काढ लिया। बिलावल महला पंजवा। अपना प्रभ आया चीत, दुश्मन दुष्ट रहे झक मारत। कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ, गई ब्याद अपाद सब नासी। अंगीकार कियो करतार, शांत सुख अर आनंद कनेरे। प्रीतम नाम हृदय उरहार, जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी। तू समरथ स्वामी मेरा, दास अपने को राखन हारा। नानक दास सदा है चेरा। बिलावल महला पंजवा। गोविंद सिमर हुआ कल्याण, मिटी अपाद भया सुख साचा। अंतर

राखी पै भंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जने अप

मूला लल स्यो प्रीत बनी रहाओ, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माही बस्त है, तू कर कृपा प्रभे अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को, कथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है।

अपार ब्रह्म परमेश्वर ता का हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जा का किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जा को तिन्ही पाया इहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर फुन आपन

का कौ धराऊ कास्यो बलवंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा, साध मूत गुर पेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवा। तुम समरथा कारण करन, ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे, मोहे

संग धरुहु तस्कर पंच नवारुहु ठाकुर सगलो भरमा होम जरुहु जो तुम करहो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरहो बलावल महला पंजवां ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास।

कुशल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप भरोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाऊ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा भेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवां जीवों नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

नवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रु बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवा जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाओ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं जाको।

बिन रस राते मुक्त ना होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत ना होई, नाम भूले थाओ ना कोई, मन माया बंदेओ सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख हों मैं पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडे आई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पकारै भगत सरोत, सुन सुन मानै वेखै जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं, मनमुख जोनी दुख सहामं।

दूजा देख कहो पावे मन सोई। नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करै, इहो मन पुन पाप उचरै। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चले पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभमानै।

सतगुरु मिलिया वड्डी वड्याई, दुख काटै हिरदै नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपै आप खाए हों मेटै, अन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ। एक गिरहो दस द्वार है जाकी, अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जाव है, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता, खेवट शब्द गुर पार लंघैया। जम जगाती नेड़ ना आवे, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत ना लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्स मन तृप्तै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई, गुरमुख आपे लख लखैया। नानक दीन दयाल भए है, भगत पाए हर नाम समैया। बलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्याव हो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया, जप जगन्नाथ जगदीश गसैया, सरल परे से जन उबरे, ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ। पार अठारह मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभमान विछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पकार है, धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव भार बढ़ैया। नाम जपहो नामे गत पावहो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हउमै जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचै परम पद पैया। इहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत वजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जान की टेक हर नाम टिकैया।

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगै सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौं खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमलै अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावै हौं तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जां सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावै मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवै प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जां हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

तार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं थाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाहे गह ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस ना

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूत है हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवण जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर। चौथ अपाए चारे बेदा, खाणी चारे बाणी भेदा,

मूक शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

ले जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता ऐन सजागह कबह ना सूता जागत जागे।

डर जान तख्त नवास सच मन पाण चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाई खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाई अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द बीचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूझै।

कह कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोए। कौन डरे, डर किसका हो।

वाई थिति वार सब आवह जाहि गुरु शब्द निश्चल सदा सच समाहि थिति वार ता जहां सच राति बिन नावे सब भरम है काची मन मुख मरह मर बिगति जाहे एक ना चेत है दूजा लुवाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते पेख करह पेख तारी पाव पाव ब्रह्म है काची सारी एथ सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

मुग्द गुवार, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार धरी हर लिवलाई राम। लिवलाए हर स्यो रही गोयल, सहज शब्द शिंगारिया। कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, मिलो साच प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया। नानक मो

वडभागियां सोहागनी हर मस्तक माणा राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाणा राम निमाणिया हर मान है हर प्रभ हर आपै राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सू करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाईऐ हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सोहागनी रंग हुए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग गुर पूरै वेखा लिया नानक।

आया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुरु ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभु पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभु पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटे आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभु प्यार।

लागे है हर हर पुर तहारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक

तज मान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो हुए दास दासी तज उदासी बहुर विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रिय का नाम मैं अंधले टोहनी ओहो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोनी महा विचित्र चंचल अनक भाव दिखावे हुए तीठ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीर बरत पूजा बाट घाट जोहनी नानक पयम पै दया धारहु

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

जियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पाओ सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उच्चरह बल गईये दोहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हों मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलीऐ हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोजो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाई है पार ब्रह्म कै रंगे राम सो प्रभ सद ही सेवी है पाई है फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाहां पकड़ तम ते काढ़िया।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इश पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ देखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

हरि उत्तम हर प्रभु गावेया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणी जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप।

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मनमुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक स्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेतलाय, नानक जिनको नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हमें रोग कमावना, अत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी, सब वडियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाई है, जिस पूर्व हो है लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरा प्रभ मेल मलाई, सतगुर का दर्शन सफल है, जेहा को इच्छे तेहा फल पाई। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाई, हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आई, सच त्याए अमरा पद पाई।

नानक जिने अंदर सच है से जन छपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जां कहो नजर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्ना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उन्ना पराया भला ना सुखाई। क्या होवै किसे ही की चख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख।

चित लाई, हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाई, मन मुख ज्ञानी अंदले, जन्म मरह फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी, अंत गया पछताई, जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम

नानक गुर प्रसादी एहो मन ता तरै जां छोड़े अहंकार आसा मनसा मारे निराश होए।

निदान सुख दाता तेरे मन वसै हम मैं जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओह कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर सतगुर अगै।

हर कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगै करमी सत गुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार।

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहू तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहू भगत जना को सन्मुख होवै सो हर रास लए वे

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे पृष्ठ थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच कूर नानक बख्श मलायन सच्चै शब्द हदूर महला तीजा।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कलत

कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजन निद भारी।

जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, किस किया ना नीका, एहो जी अरा निर्मूल को कौडी लग मीका। कहो कबीर मेरे मा

सुनो देरानी अचरज एक भयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा काए कहर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां लै उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाऊ, नाम देह सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यो जियो समाना। बलावल बाणी रविदास भगत की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दारद देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी, तू जानत मैं किस नहीं,

ऐसा तू ही क्या उपमा दीजै बलावल, जेहे कुल साध बैसनो होए, बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर, बिमल बास जानिए जग सोए रहाव, ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री, डोम चंडार मलेश मन सोए, होए पुनीत भगवंत भजन ते, आप तार तारे कुल दोए, धन सो गाओ धन सो ठाओ, धन पुनीत कतंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे बिख खोए, पंडित सूर सतर पत राजा, भगत बराबर और ना कोए, जैसे परैन पात्र।

कार में एक भया भेख धारी कामार्थी सुवार्थी वाकी पैज सुवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निःफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सवाओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का आसा चा परवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान, सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, किनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुर बचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यो रंग कसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइए, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइए, मेरे मन हर जप हर नित पड़इए, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इए रहाओ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइए, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइए, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धिआइए, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा धिआए तू तुद ले छड़इए, गोंड महला चौथा।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

तिहाय। काटे अवकट जात कतह सहाय रहाउ। रंक राहु जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किछ करे सो आपे करे। जा कायंत न जानस कोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भए लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जा कै संग इहो मन निर्मल। जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास। जा कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ। जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पौ नसै। जा कै कीर्त निर्मल सार, जा की रेन बांछै संसार। कोट पतत जा कै संग उधार, एक निरंकार जा कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवां, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

नानक जाके पूरे भाग गुरचरणी ताका मन लाग गोंड महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देव अलख अपेव सर्व पूज चरण गुर सेव गुर बिन अवर नाही मैं थाओ अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बोहित तारे भव पार गुर सेवा जम ते छुटकार अंधकार मह गुर मंत्र उजारा गुर कै संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाई है वड भागी

नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोह है सात जना पग मल मल धोह है पंच पूत जने एक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख कीनो ठाऊं जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उड़तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ तज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत।

की मन मंगैर वाला हो दयाल देहो प्रभदान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वडभाग आठ पहर गाइय गोबिंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाउ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिय हर नाम सागर तार बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करन राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हार औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरियै संसार वडभागी पाइय पुरख अपार रहाउ जो जन करै कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सकै जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावै संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गुण महला पंजवा संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदै किसका पतन होए जिस कौ राखै सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिन।

साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पय, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे ना कोई, जो करे सो दुखिया होए, आठ पहर जन एक त्याई, जमुआ ता कै निकट ना जाए, जन निरवैर निंदक अहंकारी, जन पल मन है निंदक वेकारी, गुर कै सिख सत गुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरत है हर द्वारी, जैसा करे सो तैसा पाई, अभमानी की जाड़ सर पर जाए, ने धरया सत गुर धर तेरी, कर कृपा रख हो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की, कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संत मिलै किस सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झख मारी, बोलत बोलत बढ़ बेकारा, बिन बोले क्या करह बिचारा, कहो कबीर शूशा घट बोले, भरिया हुए सो कभो ना डोले, गोंड नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सुआरे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, रहाओ हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चहो दिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिन सह गगन ना जाए ले, मोहे बैराग भयो, एहो जियो आए कहां गयो, रहाओ पांच तत मिल काया कीनी, तत कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे, हर मह तन है तन मह हर है, सर्व निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे, राग गोंड बाणी कबीर जियो की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो, हस्त भाग कै चीसा मारे, या मूर्त कै हौ बलिहारे, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर, रहाओ रे महावत तुझ डारो काट, किसे तराव हो काल हो साट, हस्त न तोरे तरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना, कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार, तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद मह जन की जिंद, गोंड ना एहु मानस ना एहु देव, ना एहु जति कहा वैसे, ना एहु जोगी ना अवतूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदर मह कौन बसाई, ता का अंत ना को उपाई,
रहाउ ना एहु गिरही ना ओ दासी ना एहु राज ना भीख मगासी ना इस पिंड नरक तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान कूच बिचारे पुए फाल या मुंडिया सिर चढ़ बोकाल एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वाका मन राता लड़की लड़कन खैबो नाही मुंडिया अन दिन तापे जाहि एक दोए मंदर एक दोए बाट हमको साथर उनको खाट मूंड पलोस कमर बद पोथी हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूडत की टेक सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार न रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वाक अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाउ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग बिदवार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरे धोई घोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माही
विचार रहाउ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिए परचै साचै। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सोदै, पांच पलीत है कौ पर बोदै। नौ नायक की भगत पछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करै, इंद्री कै जतन नाम उच्चरै। कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अत रूप विचखण। गोंड धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव। धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध रहाउ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे कै संग नीका वन। अन्ने बाहर जो नर होवे, तीन भवन में अपनी खोह। छोड़ अन्न करह पाखंड, ना सुहागन ना ओहे रंड। जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खाव है बटका सारी। अन्ने बिना ना हुए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेद जगने तुला पुरख दाने, पराग इशनाने। तौ ना पुज है हर कीर्त नामा, अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता, मुख बेद चतर पढ़ता। सगल कर्म अशता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता। खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं। मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोबिंदं। पाज नामा तरस पाव सिंदं। गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाए, प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ। ज्यो मीना हिरे पशुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा। ज्यो बिखी हिरे परनारी, कौडा डारते हिरे जुआरी।

निरास बलाए निहचो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाऊ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाऊ प्राप्त पोता कर्म पसाऊ तू देव है मंगत जन चाऊ भांडे भाऊ पवे ते त्याए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्ला दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत्पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गात्मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ किरपा तारी ता हो मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द तृप्तासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, घर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंझ भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सत जुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सत जुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। द्वापर दूजै दुबदा होई, परम पलानी जानह दोए। द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए। कलयुग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार। सब जुग मह साचा एको सोई, सब मह सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणै कोई। सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडियाई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड पाग हुवै वड भागी, ता हर हर नाम त्यावै। नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै। गुरमुख भगत करहो सद प्राणी, हिरदै प्रगास हुवै लिव लागै। गुरमत हर हर नाम समाणी रहाउ, हीरा रतन जवे हर माणक। बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुवै वड मस्तक। तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा। गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया। त्रिण ओलै लाख छपाया, मस्तक भाग हुवै तुर लिखिया। ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै। तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा। राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए। राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता। राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग होवै मुख मस्तक। हर राम जना पेटाय, दर्शन संत देहो कर कृपा। सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके। पागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे। नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो।
हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिन ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ। हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है से वड भागी, हृदय मन

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग हो वह वड मेरे जन मिलदिया ढिल ना लाइए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित नवाइए राम मोको हर जन कार लाइए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाई है सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाद लगाई है बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वद भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरै दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारी रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवह ता जपिया हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन धारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पावहु, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहु गुरमुख लिव लावहु, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहु सदा प्रभ हाजिर,

ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत ना आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए।

जिहवा तुन अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निरतकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होवा।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया करता।

सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाउ महिमा जा की गहर गंभीर

आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद, ऐसी जानी संत जनी, प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाऊ।

लाज रह हर सिमरत जम कछ ना कह रहा बिन हर सगल नारत काम सोइना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुख।

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद।

कुशल सेती घर जाहे पंडित रहाउ, हर का जस निद लिया लाभ, पूर्ण भये मनोरथ साभ, दुख नाथा सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संतोख आया।

दया, बूढ़त दुख मह काड लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाओ, आठ पहर हर के गुण गाओ, गावत गावत

पूर्ण परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह नानक तरिया।

योग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाओ गण में देखो हो सगल विचार नाम बिना को सके ना तार सगल उपाव ना चाले संग पवजल तरिये प्रभ के रंग देही तोये न उतरे मैल हम मैं व्यापै दुबदा फैल हर हरे औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा।

दुख अंधेरा मनते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पोता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ टोट ना आवै, अंत

केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

नहीं जानै भेद, अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जानै, सुन सुन अवर बखानै रहाउ, संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारी देव, देवियां नहीं जानै मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला ले छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहु कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाऊ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाना।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ भंजन रिद माहे अरा

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास अंधे

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरहु पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

जून मैं किरत पया पुरब कमाणी छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण ना बूझे बहुत हया असाध रोग उपजया।

अभमान एक त्याई साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास काट काट रव रहे।

जय जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजे रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जा कह सिमरै पावे पद निर्वाणा। भई दयाल कृपाल संत जन।

सुबा सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिट नानक तेह अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घट निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चांद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार, हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाओ, कितै देश न आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही महल उस

लखन ए जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

कुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन नीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाईऐ रहाउ माया मोह बिवर्ज समाई सतगुर भेटै मेल मलाई नाम रतन निर्मूल कहीरा तित राता मेरा मन पीरा हौं मैं ममता रोग न लागै राम भगत जम का भौ भागै जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द बीचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अन दिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुकत गत अंतर पाई अलिपत गुफा मह रह निरारी तस कर पंचो शब्द संघारी पार कर जाए न

तत् परुता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अग

अंदर पास तरी जय। तुरकी सेवा राम रवि जय, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई। जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया। हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ, नाम रतन हीरा निर्मोल। साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल। घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान। नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान त्यान। गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे। पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे। नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई। मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई। बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा। हठ निग्रह ना तृप्ता वह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा। मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाव। तुम शरण लागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ। जप जापो गुरमुख हर नाव, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने। झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं घर बार। नानक गुरमुख तत विचार, राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावह बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन भया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार भवजल पया। तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वधाई हैं। की नाम वसार है परम गया रहाउ। जत सत संयम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया। पुन दान इशनान ना संयम, साध संगत बिन बात जया। लालच लागे नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया। जां जम ताई केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया। बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया। खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप मह गलत गया। हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया। करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया। जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया। अंत काल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया। आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया। देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

बख्शन हारे बख्श लया, जिन एहो चाखिया राम रसायन, तिन की संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाई, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी महला पहला, जात सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीन।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, तां एह सोझी पाए। एहो जोग न होवै जोगी, जे कतंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों भरम चुकाए, बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही सदा अपना।

हर की पूजा दिलंब है संतोह, कहना कछु ना जाई, संतोह गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतोह, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतोह, मनमुख थाई ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाई पाई, प्रित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई, बिन नावे होर पूज ना होवी, परम कुली लोकाई, गुरमुख आप पछाणे संतोह, राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई, अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई, जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई, एहो मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संग

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भव जल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

ए अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीचै जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटोह बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किछ करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई, तिसह सरेवो तां सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप आप उपाय लख न लखना जाई, आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई, जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई, इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाहे हो संतो हो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पा।

बणत बनाई सतगुर भेटै सोजन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

हर हर आधारा किन्हीं कुंगर निर्त कराई किन्हू वर्त नेम माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नाम इहु मानना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महा

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत।

ओट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

ज्ञान अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवां मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया।

संतो शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी बेन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है

कथयो हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन ना पाया चतुराई ना पाया किन तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पलाया माया ता मोहनी तने कीती।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

शब्द सहावा शब्दो सहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज ना उपजै, विन सहजै सहसा ना जाई, नह जाई सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाई, सहसै जीहु मलीन है, कित संयम धोता जाई, मन तो वोहो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाई, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाई, जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जीओ रहे गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

वरदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिभ लावे अपनी लिवे आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करतै खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाई ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाई।

मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरास जानी, हर हर नित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आप

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे,

अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचा सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहिला साचै घर गावहु गावो ता सोहिला घर साचै जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुध पावे गुरमुख जिना बजावे इहो सच सबना का खसम है।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यों लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह त्याया, सगल तिसै का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसै दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसै वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए,

हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा, सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया, आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद, नेत्र उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन, हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै, रैन दिनस अरादिय जोग दान अनेक क्रिया, लग चरण कमल है सादी है, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइय गुनिय राम, दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो, मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे भवजल रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक।

चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम संत प्राभ विपत निवारणो तिस बिन अवर ना कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल कूर रहया एक निमख मनो ना विसरै गुर चरण लागे दिन सा भागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा पल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो सलोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल तां कै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ संत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो राम कली महला पंजवा रुती सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन पै हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुती महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो सलोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद भावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया
नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निचल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिटी जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणी से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जाका वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिरो कब पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध सरनागती नानक आस पुजाई संत रुत शरद अडंबरु असु कत के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बछोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रिपौन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते टिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्ब गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद को आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली मा

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिया जा लहे मलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर कीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। गगन अगम अनाथ अजूनी, अस्थिर चीत समाध सुगुनी। हर नाम केत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ कर मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

बूझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची अखोट गुर कहया साकार कमाव हो गुर की करनी काहे ताव हो नानक गुरमत साच समाव हो टूटै नेहो के बोलह सही टूटै बाह दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटै गंठ पड़ै विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवै टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताय ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपण दीठी कंत सुजान डर राख्या गुर आपण निरपौ नाम बखान डूंगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखै सब कोई जय भावै तै दे गुरु द्वारै देवसी तिखा नवारै सोई टंडोलत टूंडत हौं फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिली तिनकै हौं बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाऊं मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाऊं जिन नाम दिया तिस सेव सां तिस बलिहारे जाऊं जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला तां तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना होगा आवन जानव गुची है दुबदा व्यापै रोग नाम मिहुने आदमी कलर कंद ग्रंत बिन नामै क्यों छूटी है जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वजोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से इनको फास न रंच।

चाहे पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, सेजन उभरे जिन हर पाया

अपना तन मन आगै देव हस्तर करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासु, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारु, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरुद्वारु, इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम अधारु, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारु, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांड मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीर्थ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चेतना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारु, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेब हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइयै पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइयै, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइयै, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हउमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम सुमाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रिभवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहु तत बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुरु मिले अंधेरा जाई, नानक हउ मैं मेट समाए, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतरस पारी, चित बिद पुरखा जन्म।

आज को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बैराइए गुर कै शब्द हउमै बिख मारे ता निज कर होवै वासो जिन रच रचिया किस शब्द पछाण नानक ताका दासु कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना समाई क्यों तत्ते अवगत्ते पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरता।

वह है गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट नरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूजे अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजे साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवह ठवर ना पावे दूजे आवा गौण भया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श ले।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर बिद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह ओपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यों घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जाने, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाण।

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवै सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखै बिन शब्द नाही पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मूख द्वार तत ना चीनै मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु भव सागर तरियै इत उत एको जानै जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणै त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोलै तत बिरोलै चीनै अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन त्रिपतासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल न ग्रासै रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राखिया शब्द न भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हिरदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रि भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कै ठहि रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामी नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सूझी पाई।

है सहसा गया बलाय ना किस बीजे ना उगवे जो बख्शे सो खाय अम्ब है सेती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाय नानक गुरमुख।

कोई, राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानी, हों मैं छड़ै ना कोई, गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई, महला तीजा। जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए, भय का संयम जे करे, दारू भाऊ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईऐ, जा कौ नदर करी पौड़ी, दूजा भाऊ रचायो, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझ बीचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुरु नो मिलै शब्द संभाले, सतगुरु की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना, अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, व्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में भरम, तिस दै दितै नानका, तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सच्चो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

नावे दुख सहाहि नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहि पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याही है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार होए अपने स्वाए आए बह गल्ला करह ओना मारे जम जंदार

सतगुर मिले तन आमदड़ाई सब किल विख कटनहार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवन दाता नाही किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है रस कस साधा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखे उन गुरमुख किसै प्याई सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमाम दे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ कसत लायन मन मुख वे गूती गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सपीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुर दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरखै खटिया भाऊ भावै आवो भावै जाओ सास्त वेद न माने कोई आपो आपै पूजा होए काजी होए कै बह न्याय फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक महावह चाड़ी खाए चौका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरि जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियान है, होर पकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिर है, ना सत मूंड मंडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिर है, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहू चर है, जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवे, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंद सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहू केहो संयम करना, गुरमुख हो सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जोत सपावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया। बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता। हुसी आए तई आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही कूड़न खुटे नानका। ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे भीख्या खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोवे दह सिर लंक गवाए, जिन सीता आंधी दौरू वाए। रोवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवे जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी भया। रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे भीड़। रोवे है राजे कन पड़ाए, कर कर मांग है भीख्या जाए। रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी है बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछे आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै, रत्ना

दस्य अंधा हुए सो जाय हुए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाय अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई जितै सो वस्त्र ना जापई आपे वरतौ जान नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा आपे तारी लायन सब मह परवेसा आपे सेख साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहार देहु काम क्रोध दोए खेत लभ

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक के

आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवां। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो देखाल, हूं तिस देवा मन अपना, नित हिरदय रखा संभाल। इकस सतगुर बाहरा, त्रिग जीवन संसार, जन नानक सतगुर तिना मलायुन,

जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जे वड़े अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ों मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारजे आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै में लाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवां तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौं बलिहारी तिन जे खसमै भाणिया।

रावणि टिचर रखन गांड जित दिन किश ना होवे तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

लाई तो लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करे बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलियां एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया ना।

देहो दर्स मन प्यार पौड़ी, जिस तू आवह चेत तिसनु सदा सुख, जिस तू आवह चेता

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा भग न बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया।

सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो

साहि सब सैनो कृपाल संभाली साहि साहि बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरा

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

त्रास खाएं। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मटाएं। महला पंजवा हुक्म उचलै हुक्मे रह। हुक्मे दुख सुख सम कर सह। हुक्मे नाम जपै दिन रात। नानक

होगा हरक आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याए कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाऊ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरने पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने जिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी सोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारणो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारणो जिसनो लाए सच तिस सच संभालणो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जान।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थी आता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

दलाली सतगुरे आखै सच्चा करे सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुकथिये पराली पये कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान

मन में लो। गुर का शब्द गुण की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दी नरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद भर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे। रहाउ पवन चतर दस भाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औदू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

कह कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी करै गमान, चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई, कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा। संतन दो रादे, हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर प्रसादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन,

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि पलाई जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदियले चक्र पुंगा पेटियले रायन संगा चूकियले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुल नीना तह बाजे अनहद बीना बकत बक शब्द सुनाया सुनत सुन मन बसाया।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजे असमेध जग कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तऊ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित है लीजे रहाउ गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदार नाइये गोमती सहस गऊ दान कीजे कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

धारी असुर नदी का बंद है मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यो गोष्ठ करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरे कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरे रहाउ हर हर नाम जपह आराध सेवक पाए खरे किल विख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाध नगर में है एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यो देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन पग लगे रहाउ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ सरनगे तुम सरनागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरेओ प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारेओ प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाऊ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सललै सलल उठह बहु लहरी मिल सललै सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरे दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मात हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदू।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान।

सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे।

दियो सहज सुपाए सुवारियो महाबिखम अग्न का सागर तिसते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख ना रहियो रहाऊ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना।

ते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

ने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला।

नीता बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत रहाओ कोई विरला आपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहे पनीत नानक दास बल बल कीत नाट अष्टपदियां महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मन तन नाम आधारी खिन पल रह ना सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम संभारी रहाव हर हर हर हर हर मन त्यावहु मैं हर हर नाम प्यारी दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर गुर कै शब्द सुवारी मधुसूदन जग जीवन माधु मेरे ठाकुर अगम अपारी एक बिनो बेनती करूं गुर आगे मैं साधु चरण पखारी सहस नेतर नेतर है प्रभ कौ

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सम्हारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौं सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढे जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचै।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना संभारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड़े पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसिए तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाई हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अतनीके मन शरदा कर हर तारे मेरे प्रभ शरदा भगत मन भावे।

का नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारे। नाट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे। रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार सिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारे। श्रद्धा श्रद्धा अपाए मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारे। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारे। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाव साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संहारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावहो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै है पर उपकारी संतै संत मिलै मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं तारे।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंध मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमती हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो,

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुए लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम नाराच है, एक हर हर चरणी।

गए। पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग, अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सह की एक बात सहेली, जो मैं बेदन सा किसे आखा माई, हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई। रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी, गया सो जोबन तन पछताणी।

जाई ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई इस धन की देखो वडियाई सहजे माते अन दिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस धन बिन कहो किनै परम गत पाई भणत नानक अकथ की कथा।

पुलवासी गुरबचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला घर पंजवा।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भेजह

आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडिआईआ जय भावै तै दे मारू महला तीजा पिछले गुनहा बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहा विचो आप गुआए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

आनंद दिन त्याय हर नाओ सतगुर कै बचन अराद तू आन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानी है

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरे अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी

हरे गण गंधर बीज पियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस ते आयो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावै सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लागे, हर हर भगत परे पंडहारा, गुरमुख राम करे निसतारा, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो, हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा समा

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौह जुग चौह कुंट जानिया। जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो। सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता। जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छडाई जियो। हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उदारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

नानक तिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी त्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव।

गुण प्रम छूटा जो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ खतरी।

भोगह तपत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दभ तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बिकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार ना परना जाय काम क्रोध लोभ

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मन

परम मन का सतगुर सरणी जाए, कर्म जिस कौ तुरहुं लिखिया सोई कार कमाई, पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई, खेत मेरा जमिया नखुट ना।

तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया,

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा। मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आव है तब ही पत पूरी, बिसरत रलिय खाक रहाउ, रूप रंग खुशियां मन पो।

माया रंग बरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिन सब राती वन त्रिण त्रि भवन पानी।

को मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदाहरण तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटे संत जित हर हरे हर त्याइए मोह को कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ऊट आधारा रहा सर्व धारण प्रित पारन एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जाल हम।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप

लाल अमोला लालू अगह अतोला नामो रहाउ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर।

महाभौजन माहे तुलोहो जा को लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उच्च।

वैदो न वाई भैनो न पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरहो प्रधान ही घट कटे वासी सर्ब निवासी।

सगल जन्म बिछियन सिंह खोया, सिमरियो नाही कनाई रहा। काल पास जब गर्भ मेली, तेहे सुध सब बिसराई। राम नाम बिन यह संकट मह, को अब होत सहाय। जो संपत अपनी करमानी, सिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू न गाय। मारू महला नवा माई, मैं मन को मान ना त्याग्यो। माया के मद जन्म सरायो।

करै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

अठ सठ तीर्थ बहु कणा ब्रह्म था के भेखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

कछ नहीं गुरपूरै पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुभर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजै बिन भागा तन नाही जिनकै नाम ना मन वसै

सुख नहीं, गाढ़े लादे शार, विछड़िया मेला नहीं, दुख घणो जम द्वार, अगे क्या जाना नाही, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे,

ताच पठायो लेख मुख तमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद पावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

मारू महला पहला साची कार कमावनी होर लालच बाद एहो मन साचे मोहिया जिहवा सच साध बिन नावे को रस नहीं।

लालह गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई मारू महला पहला हुक्म भया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द विचार।

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत सो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तजब गूचै अवरा के कर हेरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटै दुर्मत कुमन घेरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उदर भरै जैसे ढोरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरा नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीनै जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजै बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत ओ है। नाम ना जपई क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सो है। मूंड मंडाए जटा सिख बांदी, मोन रह अभमाना। मनुआ डोले दह दिस तावे, बिन रात आत्म ज्ञाना। अमृत छोड़ महाबिख पीवे, माया का देवाना। कीर्तना मिटई हुक्म ना बूझे, पशुआ माहे समाना। हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी पारी। स्त्री तज कर काम व्यापिया, चित ला

ओ हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी।

पावै इत्युत टूंडत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापी कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे खावै भोगै सुन सुन देखै पहर दिखावै काल करे बिन

जहां को हर प्रभ नदर करी ते निर्मल पुरख परम्पर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर कै

सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवै सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

सुखदाई, एक निमुख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सुथान वसारियो, एक निमुख नहीं मन लायो, उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री, इस ही मैं उर जायो, जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो, जो भयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो, मारु महला पंजवा, कर अनुग्रह राख लीनो, भयो साधु संग, हर नाम

जिन यो पायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

शंका महान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुखत जावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जामना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराती तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पालिय, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाभ है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

हे देवानी शब्द सहज रस अंतर मानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

कासं आपे साचे गुण पर गासं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जिस करना सो

साहिब सबना सिर भाई मिले भौ जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सहदाता तिल ना तमाई। परपुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई। क्या सलाही अगम अपा।

मन जले पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे मां की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत कर आपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई हे तुझी ही किया जम्मन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख है दुख दर्द शरीर हो जाई हे निज कर बैस रहे पहु खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुपार

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेत धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणे मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे।

होई, ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भाव है तिवै चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

तह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्जे

एकहु करनंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी इउं पव जल पार लंघाई हे देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई हे ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई हे गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चल सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस भावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणै।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे।

पाए अमृत रस पाए जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीना है काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज विनोदी उठ चलतै मता ना कीना है श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ कीना है नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की कहतै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

अखर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

अगन बेख झाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड कमावह रोग बुरा बुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजह पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेह रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है।

ताकत कूड़ कपट महतीका अहनस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूके जम का डांड ना कबहू मूके बाकी धर्म राय की लीजह सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पवजल परया बिन गुर पार ना पावे कोई।

ना आवे मनसो प्रभ अपरि अपाराहि गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुल पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराहि सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरपुरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम मति उत्तम।

गुप्त रहता ही। चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावे क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवे जावे,

अकेला जम वस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूजै आज काल पच जाता है सतगुर बाज ना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सललै सलल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सक

कहो क्यों लखिया जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी, जा को अलख लखाई आपी, अकथ कथा बुद्धताहाई, जन्मे को वाजह वाधाई, सोहे लड़े अज्ञानी गाई, जो जन्म है तिस सर पर मरना, किरत पया सिर साहाई, संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन से क्या ले आया क्या ले जाहाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा।

राम नाम घट अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े वडेरे नानक साच मिले पत राखो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाईंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाईंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीपक राखी सस कर सूर समाईंदा पंखी पंच उडर नहीं तावह।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किछ करे सो अपन भाणे लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे नाम।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप नारे ख्या मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी। ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर। नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मछ पयाला। दोजक पिस्त नहीं खैकाला नरक सुरग नहीं जम्मन।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा।

हुकम सो दरगाह पैंजे सात मलाई समाईंदा हुकमे जुग शक्ति गोदारी हुकमे सिद्ध साधक विचारी आप नात लथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराईंदा काया कोट गड़े महराजा नेब खवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही घर वासा लब पाप पछताईंदा सत संतोख नगर महकारी जत सत संजम सरन मरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर शब्दी पत पाईंदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर धारी आप निरालम अपरे अपारी आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन अपाईंदा पौन पानी सुन्ने ते साजी सृष्ट अपाए काया गढ़राजी अग्न पानी जीओ जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाईंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश अपाई सुन्ने वर्ते जुग सबाई इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाईंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन ना पाईंदा सुनो चंद सूरज गहनारी तिसकी जोत त्रे पवन सारी सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाईंदा सुनो धरते आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाईंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाईंदा सुनो रात दिन सदोह किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाईंदा शाम वेद ऋग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दस अवतारा शिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

गुर ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल एहो तन किया, आत्म राम पाए सुख तिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाति, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया, बेण रसाल बजावै सोई, जाकी त्रे पवन सोजी होई, नानक बूझो हो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारी, आप तरह संगत कुल तारह, इन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदर जान सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाक दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वसत अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती।

चोहरे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एकंकार नरानम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना हरे आत्म राम नाम पाया सर्व निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन

निरंजन राया, दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे, आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सबाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखन हारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभतारी, घट

निरंजन गाया, हो मैं अमित शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो भवजल जग तरना। गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हो मैं ममता लोभ बंदासन, नौ दर मुक्ते दसवै आसन। ऊपर परे परे अपरंपर, जिने आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया, अकल गाए जमते क्या डरिया। जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया। सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना। कथ कथै देखै अपरंपर, हुन गर्भ ना जोनी जाया। सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुर मुक्त न आवै जावै। मूल मंत्र हर नाम रसायण, कहो नानक पूरा पाया। सच बिन भवजल जाए ना तरिया, यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त भये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के फाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यगन निवा

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगा।

अवतारे सस कर सूर दीपक गहनारे देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए अनुभव पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाईऐ बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावै गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगताके उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरीय अंतर की दुबदा अंतर जरीय पांच बाण ले जम को मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरै पहाग मलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजै गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरपहो गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया, निरपहो सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो।

पे अगोचर गुर मिले है परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेव हो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कै हर दरगाह जस गाया सतगुर मिले त महल बुलाई साची दरगाह गत पत पाई साकत ठोर नाही हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवहु सतगुर समुंद अथाहा पावहु नाम रतन तन लाहा बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवहु संक ना कीजै।

नाम रतन पाया मनसा मार मन माहि समाया आपे खेल करे सब करता आपे दे बुझाई है सतगुरु सेवे आप गवाए मिल प्रीतम शब्द सुख पाए अंतर प्यार भगती राता सहज मत

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै ता दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे दिन

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए

आई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरे यार अवगण यारी अवगण यार, कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है। अवगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे,

बिनसै तहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सत्य आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हौं तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जही वेद पढ़ हर नाम ना बूझ माया कारण पढ़ पढ़ लूझ अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरी जही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवि जै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वसिया तिथै मोह न माया सद ही साच वसिया घट

सुख सहज समाधि, हर हर करतिया मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, सीजन सुखिये सतगुर सच्चे लाए, आपे भाणे आप मलाए, सतगुर राखे से जन उबरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी है, हम मैं मेरा दूजा पाया, किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया तू पछाताही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावे।

थिर साचा सहलाही सदही जिन गुर का शब्द पछाताही। एक मूल लगे उन्नी सुख पाया दानी लागे तिन जन्म गवाया।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखै रहना गुरमुख एको जाता ही जात पाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजे दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द न बुझै इयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखै उर धारी।

सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाताए, कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाताए, माया मोहे हर स्यों चेतना लागे, दूजे पाए घणा दुख आगे, मन मुख परम भुले भेख धारी, अंतकाल पछताताई, हर कै भाणे हर गुण गाई, सब किलविक काटे दुख सबाई, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राताई, जिसनो नदर करे सो गुण निद पाई, हम मैं मेरा ठाक रहाई, गुण अवगुण का एको दाता, गुरमुख विरली जाता ही, मेरा प्रभ निर्मल आते।

तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम अथाहा आपे सच्चा सच वरताई।

सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सोह तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगे ताहाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावे अलाखे अपेवा जिनको नदर करह तू अपनी गुरमुख अलख लखाही।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

हुक्मे कटदा साहाहि गुरमुख साचै किया अकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवै सो सच बूझै शब्द सचै सुख ताहाहि गुरमुख जाता कर्म विधाता जुग चारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख गुरमुख शब्द समाहाहि गुरमुख नाम शब्द सलाहि अगम अगोचर वे परवाहि एक नाम जुग चार उधारी शब्दे नाम वसाहाहि गुरमुख शांत सदा सुख पाई गुरमुख हृदय नाम वसाहि गुरमुख होवै सो नाम बूझै काटे दुर्मत फाहाहि गुरमुख उपजै सात समावै ना मर जम्मै ना जूनी पावै गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लैंदे लाहाहि गुरमुख भगत सो

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, नानक जन नाम

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजे पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

सह घट यंतर सो घट निर्मलता हाही सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मन ताहाई शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभु साचे वे परवाही आपे गुणदाता शब्द मलाई शब्द का रस ताहाई मनमुख भूला ठहर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई बिख्या राते बिख्या खोजै।

ये कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वस्या शब्दे सच सलाहाई से जन मिले तुर आप मलाई साची बाणी शब्द सुहाई नानक जन गुण गावे नित साची गुण गावे गुणी समाहाई मारू महला तीजा निचले एक सदा सच सोई पूरे गुरते सोजी होई हर रस पीने सदा त्याइन गुरमत सील सनाहाई अंदर रंग सदा सकियारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौ निद नाम वसया घट अंतर छोड़िया माया का लाहाई रैयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक त्याइन सदा सुख पाइन निश्चल राजत नाहाई आवन जाना रखे ना कोई जम्मन मरण तिसे ते होई गुरमुख साचा सदा त्यावहु गत मुक्त तिसे ते पाहाई सच संयम सतगुरु द्वारे होमै क्रोध शब्द निवारे सतगुर सेव सदा सुख पाईए सील संतोख सब ताहाई होमै मोह उपजै संसारा सब जग बिनसै नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए नाम सच्चा जग लाहाई सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कार्य सच नाम सुहेला बिन शब्द है कार्य के हाई खिन मह हसै खिन मह रोवै

महा दुख भारी विस्ता माहे समाहाए वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछा।

पावे है। अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई। मनमुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

दुख पाए, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

का पसारा। सतगुर सेवहै से सुख पावहै, सच्चै शब्द मलाइंदा। पौण पानी है बै संतर, माया मोह वरतै सब अंतर।

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो विद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ संभाव है तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

करता ज्यो भावै तिवै चलाईंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत न पछाने आपे करे कराए करता आपे परम पलाईंदा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाइए, बिन नावह दुख पाइंदा, आप करे न आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई।

0: गणत चकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल हुआ सहजी सहज समाएंदा
1: अंतर लोभ मन मैने मन लाई।

आई। गुर कै पाणे चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाईंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही, मिल साचे सुख पाईंदा। नेक जतन करे इंद्री वासना हुई,

सतगुर सेवय सहज आनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिय है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्या जम काल लेखा लेवे, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, किन सुख पाया जो

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया कर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चै सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मुहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याईंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाणी विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाई पाणी विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

तुद्याई जिस भाणा भावै सो तुझै समाई भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसै कराईंदा जां तिस भावै तां गुरु मलाई गुरमुख नाम पदारथ पाई तुदे आपणै भाणै सब सृष्टि अपाई जिसनू भाणा देह तिस भाईंदा मनमुख अंध करे चतराई भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई परमे पूला आवै जाए कर महल न कबहू पाईंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई।

वा पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरल किने थान पाया इत साथ निभ सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊं गुर कै शब्द तिन में।

बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाईंदा। एक कित आई जन्म गवाई, मनमुख लागे दूजे पाई। एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसे।

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर

आई हित रंग साचे माहे समाई पूरे भाग को एहो रंग पाई गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान दरगाह कब ही ना पावे मान दूजे लागे जन्म गवाया बिन बूझे दुख पाईंदा मेरे प्रभ अंदर आप नकाया गुर प्रसाद।

रहे आसमाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा।

कर्म ते आया जत सत संजम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस बिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जियो मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हम मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चा ना इस माया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

मुख तो हुए पंच दूत बस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया।

माही समाया करे अंदर को कर पाई गुर के शब्द सहज सुपाई उथे सोग वजोग न व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पार ना पाए कोई सहजे गुण रवह दिन राती ज्योति ज्योत मलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत चुगह गुर शब्द निवासा उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई निज कर वासा।

लाभ रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागी। नानक तिनकी फिर गत हुए।

आई अमृत रास सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहज सहज समाई है जिनको करतै तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सीजै नाही गुर चरणी चित लाई है जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख बखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वह प्राणी है जांको राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साख समारा।

तुझै तह करते हरियन देन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवन ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान कर है तुद पावे, होर केती चक चक आवे जावे। जिनका पख करह तू स्वामी, इनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना। अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत को रिजक संबाहे, करण कारण समरथ अपाहे। खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया। सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे। गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता। मात पिता सुत बंद पपाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना। मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया। दूख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगाही है।

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोब सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवा।

किर्त संजोगी पय इकत्तरा करते भोग बलासाहि जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है सिंगार रखै संगानै मिल एकत्तर वसै दिन राती प्रियो दे तन है दलासाहि तन मांगै प्रियो बहु विद तावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच न साकै तन रहती पू

ग्रह पीतर जित उतर भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा हे हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच धारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच तप

सहज घर तेरे हम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मह थापयो थापनहारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहि जिस देह दरस सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने चतुर स्वरूप सियाणा सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवह सोवे परवाह जिस चीत आवह सो साचा साहा जिस चीत आवह तिस पौ केहा अवर कहां किस की जाहे तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुर पूरे लै टूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर भया बनासी थीवे ना को आवे ना को जावे गुर दूर किया परमी जाहे पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी चढ़े सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचे हैं जन तेरे, नानक सद कुर्बाना है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रव दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहो किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप आप प्रवतिया आप उपाय रचियों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथाह अपारा ऊने भरे भरे पारी ऊने यह चलत स्वामी के कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वेख कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरों दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सब बंधन।

सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी। आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना। ऐसा कोवड भागी आया आठ पहर जिन खसमत आया। तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना। एह बख्शीस खसम के पावा आठ पैर कर जोड़ त्यावा। नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा सूरत देख ना भूल गवारा। मिथन महारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाई। निःचल एक नारायणा गुरपूरे की पौ सरनाई। मोह सोग सब परम मटाई। एको मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ह मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भय पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौं बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा बेद न जान है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाई किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भय कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोले

चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमर है सिमर है सगले पार जना सिमर है खंड दीप सब लोआ सिमर है पाताल पुरिया सच सोआ सिमर है खानी सिमर है बाणी सिमर है सगले हर जना सिमर है ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमर है देवते कोड़ ते तीसा सिमर है जाक दैत सब सिमर है अगंत न जाई जस गना सिमर है पास पंखी सब कूता सिमर है बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमर है रब रहे आस्वामी सब मना सिमर है थूल सूखम सब जनता सिमर है सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमर है प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमर है नर नारी आश्रमा सिमर है जात जोत सब वर्णा सिमर है गुणी चतुर सब बेते सिमर है रैणी अर दिना सिमर है घड़ी मूरत पल निमखा सिमर है काल अकाल सोच सोचा सिमर है सौन शास्त्र संजोगा अलख ना लखी है एक खिना करण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाभ हो जन्म पदार्थ सोजिना जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुरना जोनी परमुरुना गुर का शब्द वसै मन जाकै दुख दर्द प्रमता का भाग सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाकै मन बूठा सो पूर करमा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवरमा कही है दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिने अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रव तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट ना आवै साध संग हर कीर्तन गावै सगल मनोरथ तां के पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा साचे साहिब गहर गंभीरा कहो नानक से ही जने उत्तम जो भाव है स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांछै जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना सर्वणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावै हर तेरे मिट है कमाते अब गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवै पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरियै संत संग मिल सागर तरियै अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को करले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मन तन अर्प धरी हर आगै जन्म जन्म का सोया जागै जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरै
एक रव्या सर्वंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाई है सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद मादे अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुमह करायो सरल सहाई संत है तना जाचक जाच है तुमह अराध पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठ रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना।

अदिता कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाई ता जग मह आई जो तुद पाणा से कर्म कमाई।

तीहां हर जस तेरा पणी है, आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा, तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खलावे है त्यों खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा, एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर, एक ही कौ घास एक ही कौ राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा, कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा, हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर धड़ा, सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा, एक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाए समाया, विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई, अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा, कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया, केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा, आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवे जम नेड़ा, कीमत तागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसह कह निबेड़ा, तिसह शरीक ना ही रे कोई, किस ही बुते जवाब ना होई, नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा, मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी, मद सूदर दामोदर स्वामी, रिखि केस गोवर्धन तहारी, मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे, जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे, जग जीवन अबनासी ठाकुर, घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते, सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारेखिया, बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेत्र मूर्त है सहसा, एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे, गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते, वर्ण ना साकों गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल, आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नाही खो, अवनासी अवगत अगोचर, सब किस तुझ ही है लगा, श्री रंग बैकुंठ के वासी, माश काश कूरम आग्या अवतरासी, केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा, निराहारी निरवैर समाया, तार खेल चतर पुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देन सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत संगा,
पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख भणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पै आल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आप हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गहू चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राखो साध संतन कह संग संगा दृष्ट मान है सगल मतेना एक मांगो दान गोविंद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वा जंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भावे है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा मार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लाह आला हुजरा।

साबूरी, तीजा हले मी चौथा खैरी, पंजवे पंजे इकत मकामे, एह पांच वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोर हो खाना, गिल करे आओ तो वो मैं लाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जाको मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाय कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे उथापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओह सगल कटां का मालका, चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारे, जप हर हर भौ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, तिसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म को मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ता को लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दरड़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नि

गुर पूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना। जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता। किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया। तिस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना। तार अन ग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे। हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है तिसे जनावना। जां कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापै माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना। आग्या दुख सुख सब कीने,

सोई पूर्ण पुरख बदाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरा मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते सेई काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माए समाए मोल अमोल ना पाई है बन जना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन लै सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया हत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूर्खा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे

सहज वनस्पत फुल फल भंवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेऊ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देऊ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे।

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोय। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हर दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुद लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी। दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो। लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम। एक आपे परम पलायन तिन ने फल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम। इकनी सुन कै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। एक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणु तड़िए जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ

अंदर मुश्क चुकोलिया, कीमत कही ना जाए। पौड़ी, इस जुग में नाम निदान है, नामो नाल चल है, एहो अखुट कदे नान खुटई, खाए खर्चियो पल्ले, हर जन नेड़ ना आवई, जम कंकर जम कल्ले, से साह सच्चे बन जा रिया, जिन हर तन पल्ले, हर कृपा ते हर पाईए, जा आप हर कल्ले। सलोक महला तीजा, मनमुख वपार सार ना जाननी, बिख विहाज है बिख संग्रह, बिख स्यों तर है प्यार, बाहर हो पंडित सदाए दे, मनहो मूर्ख गावार, हर स्यों चेतना लाएनी, वादी तरन प्यार, वादा किया करन कहानियां, कूड़ बोल कर है आहार, जग मह राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार, नानक नाम ना चेतनी, हुए मैले मरह गवार। महला तीजा, दुख लगा बिन सेवे, हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखै दा, आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए, सब किश तिसै रजाए। पौड़ी, हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामै तृप्त नाही, दूजै परम भलाया, हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किछु ना पाईऐ, जे बहुत लुचाही, आवै जाए जम्मै मरै, गुर शब्द छुटाही, आप करै किसे आखीऐ, दूजा को नाही। सलोक महला तीजा, इस जग में संती धन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आई, सतगुर सच दृढ़ाया, इस धन की कीमत कही ना जाय, इत धन पाया भुख लखी, सुख वस्या मन आई, जिन्ना को तुर लिखिया, तिन्नी पाया आय, मनमुख जगत निर्धन है, माया नो बिल लाय, अन दिन फिरदा सदा रह, भुख ना कदे जाय, शांत ना कदे आवई, नह सुख वसै मन आए, सदा चिंत चित वधा रह, सहसा कदे ना जाय, नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय, सदा सदा सुख मह रह, सच्चे माहे समाय। महला तीजा, जिने उपाई मेदनी, सोई सार करे, एको सिमरहु पाई रहो, किस बिन अवर ना कोई, खाना शब्द चंगियाईया, जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सुनाए है, सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए, सहजे सच धन खटिया, थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द शिंगार है, जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझिए, जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जापै, हर हर नाम त्याई है, हौ मैं अज्ञान गुआपै, अंदर अमृत भरपूर है, चाखियां साध जापै, जिन चाखिया से निरपो भए, से हर रस त्रापै, हर कृपा तार पी आया, फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना व्याजै कोए, गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पाइन, जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है, जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्ने है, सुख पाईए, गुर शब्दी विचार। पौड़ी, अंदर राजा तख्त है, आपे करे नियाउ, गुर शब्दी दर जानिए, अंदर महल असराव, खरे परख खजाने पाइन, खोटिया नाही थाउ, सब सचो सच वर्तदा, सदा सच नियाउ, अमृत का रस आया,
मन वसया नाहू सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बुझो ज्ञानी बुझना ए कथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाई है अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जा।